0: आपने शायद पहली बार स्टेज पे देखा होगा, दैट वाज जीबी इन माय विजन, कि हम जब ऐसे लोगों को स्टेज पर लेकर आए जो शायद कभी स्टेज पे जाने के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं है, और शायद कभी उन लोगों ने मे बी यू नो इसके बारे में कहीं पे प्लान भी नहीं किया था, ऐसे ही उनसे मुलाकात हुई और जिस तरह से जीबी उन लोगों ने परफॉर्म किया,
1: हमारे सारे स्पॉन्सर्स को, एनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस हमारे टाइटल स्पॉन्सर, कल रॉबिन भैया और रोशन भैया वहां पर थे भी एंड ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड. अगर आप सबको एक ब्रोशर मिला है उस पर एक क्यू आर कोड है, सो इफ यू वॉन्ट टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस डू स्कैन द क्यू आर कोड एंड रजिस्टर योर सेल्फ. साथ ही साथ हम और इन्फॉर्मेशन एनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस का डालेंगे, सो डू गो एंड चेक देम आउट.
0: जी हाँ, और हमारे बाकी भी जो स्पॉन्सर्स है, सिल्वर स्पॉन्सर्स, माया फूड्स, आर के बेंच टॉप्स, हर्ष एंड योर एंटायर टीम, आप वहाँ पर कल थे, हमें भी बहुत अच्छा लगा.
1: पूरी फैमिली हाँ, के पूरी साथ फैमिली, आए थे हाँ, ये, हाँ.
0: दिया लाइटिंग के लिए आप आए, और जिस तरह से आप लोगों का प्यार हमें मिला, और जब हमारा शो फिनिश हुआ व्हेन द कर्टन्स फेल, आप यू केम एंड हमसे बात की और हमें बताया कि आप लोगों को कितना पसंद आया, और अगले शो के लिए तनु की तरह आप लोग भी तैयार रहते हो. थैंक यू.
1: मूविंग ऑन टू आवर ब्रॉन्ज स्पॉन्सर वंस अगेन, हार्कोर जी, थैंक यू सो मच के शो के बाद हमें आके अक्नॉलेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, हमारे परफॉर्मर्स को, क्रू को अप्रिशिएट करने के लिए, और ये कहने के लिए कि आपकी लिटिल वन को कितना अच्छा लगा रामायण का शो, एंड इनकी बेटी ने आके हमसे बात भी किया. इट वॉज really really cute, and once again you also said you're super excited for the next production. We definitely are excited, we are working through it, but hamara next production humne kal release kiya tha, at some point of the show we will let you know the name as well.
0: Kamlesh Patel ji, thank you aapke aashirwad ke liye, Nikesh Nilata ji aapka bhi hum swagat karna chahte hain. Chale aage badhte hain hamare supporting sponsors. Kal aap bhi, you guys came in numbers, hame maloom hai ki aap business owners ho, बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी आप वहाँ पर अपना जो कीमती समय ये निकाल कर आए. सबसे पहले टच इन ग्लो जस्ट एंड योर एंटायर फैमिली, पाजी तो स्टेज पर आकर आपने हमें जिस तरह से आपने बताया है, और आई थिंक लाइक जी भी, आई थिंक जस्ट पर्सनली स्पोक टू यू रिगार्डिंग आवर शो.
1: जी, जस जी का आज सुबह कॉल आया था, एंड जस जी वॉज सेइंग द सेम थिंग कि एक सेकंड भी नज़र नहीं हटी स्टेज से या परफॉर्मर्स से, एवरीथिंग फ्रॉम डांसर्स. जस जी वॉज रियली टॉकिंग अबाउट द सिंगर्स दिशा एंड नितीश, जिस तरह दिशा और नितीश ने वाइब सेट किया था उस बारे में जस जी बात कर रही थी. एंड जस जी ने यह भी कहा कि उनको दिशा का ड्रेस बड़ा अच्छा लगा, बट आई फॉरगॉट टू टेल दिशा अबाउट इट, आई विल लेट यू. जस जी हम जरूर दिशा से पूछेंगे उन्होंने कहाँ से लिया था, बट डेफिनेटली
0: अपना दशरथ आ गया, आई थिंक दशरथ जी.
1: Thank you. So touch and glow. अगर आपको भी glowing skin चाहिए, so do go to touch and glow, guys.
0: इसके साथ साथ आगे चलते हैं पोती चोर. हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खास तौर पर से केरला, आपको पता है हमारा पूरा शो कल जो था ये हिंदी में था, पर आवा मलयाली फैमिली, आप you guys came in numbers, not in just numbers, supporting us, even though you know it's not your first mother tongue language nahi hai. To Pothichor abhi Christchurch ke sath sath pass mein Rolleston mein bhi hai. Thank you Pothichor ke jo bhaiya hai, main unka naam to yaad
1: nahi, Binoy Chetan, and in saying that Binoy Chetan ka bhi kal raat ko hi message aaya ke what an amazing show, but Binoy Chetan, we want to let you know ke aapke bina, without you this wouldn't have been possible, so thank you so much for supporting Ramayan.
0: Ji haan, Kamlesh ji keh rahe hain, someone attended the show just once more. Kungra was amazing. Yeah, he was. Aur Vinita, I also met you. Thank you for coming and supporting. Chale, aage badhte hain. Anshu aunty ko take karo bhai. Unka bhi Diwali aa raha hai, Jibiji, 31st December ke liye.
1: October. December.
0: New Year's party ke liye chala gaya.
1: 31st October ko ho raha hai, Sanatan Mahila Mandal ka Fiji Diwali. Guys, let's go in numbers and support. It's a free event. It's free food. It's free entertainment, so let's go all in numbers and support Anshu aunty. It's not a big business, it's a small real fruit ice cream business, and still came on board to support Ramayan. Samne se aunty ne hume support kiya, so we are very very very grateful to Anshu aunty, so let's show the support back as well.
0: Nile bhai, Nile ji hamesha se hume support karte aaye hain as SBG accounting, now hamare Ramayan mein Nile ji, we are homes. Nile, thank you bhai, aap bhi aaye, hame pata hai ki aap, you are not one of those person who wants to get recognized or gets called out, but thank you hame support karne ke liye, aur iske sath sath

0: सीखे आप मनीष कम्युनिटी के। लोरिन जी आप बिजी थे, आप खुद तो नहीं पहुंच पाए, पर आपने रिटा और रिटा के साथ भाभी को भी भेजा था, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक दे एब्सोल्युटली लव द शो। रिटा का एक बड़ा सा मैसेज भी आया एंड वी सॉ द पोस्ट
1: एज वेल। जी डेंटल ब्लॉसम डेंटल प्रिया नारंग जी, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। एंड प्रिया नारंग जी आपने भी कहा कि नेक्स्ट प्रोडक्शन में यू वॉन्ट टू सपोर्ट अस एंड बी पार्ट ऑफ इट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू अगेन, बट थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग सपोर्ट। इफ यू आर इन एनी डेंटल नीड्स, डू कॉन्टैक्ट प्रिया नारंग जी फ्रॉम ब्लॉसम डेंटल।
0: फोटोग्राफी के लिए अगर इफ यू फॉलो माय नॉट फॉलो अगर आप मेरे साथ फेसबुक फ्रेंड्स हो या इंस्टा फ्रेंड्स हो, ऑलमोस्ट ऑल माय प्रोफाइल पिक्चर्स इज डन बाय नन अदर देन जेके इमेजेस। सालों से, लगभग 10 साल से जब से क्राइस्टचर्च में आया हूँ, उनसे हमारी मुलाकात है जस्ट ऐसे शो में होता, पर ही हैज़ बीन विथ अस फ्रॉम डे वन। जब से सिर्फ क्रिश और जीवी साथ में जब से हैं, तब से जेके भी हमारे साथ हैं। व्हाट एन अमेजिंग वर्क ही डज।
1: जी एंड रामायण के लिए जो जेके इमेजेस ने हमें सपोर्ट किया है, नो वर्ड्स वुड बी इनफ टू से थैंक यू टू हिम। फ्रॉम ऑल आर क्रू फोटोज, जब हम क्रू इंट्रोडक्शन कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद है, फ्रॉम दैट फोटोज टू इवन हर डॉटर, हिज डॉटर निया बीइंग आर सूर्पनखा, एंड लॉट ऑफ यू लव दैट कैरेक्टर सूर्पनखा'स परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग टू एवरीथिंग। रामायण का फोटोग्राफी लीड जो लिया है एंड डन आ फोटोज एंड एवरीथिंग इज जेके इमेजेस। जोई अंकल, थैंक यू सो मच फॉर बींग आ बिगेस्ट सपोर्ट एंड फॉर बींग आ बिगेस्ट मोटिवेशन। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफर, जेके इमेजेस इज द नेम, मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट हिम।
0: अभी बाबू नमस्कार, कैसे? और प्रताप जी अभी हमारे साथ है, सर्वा कुमारन, वेलकम टू अवर शो। मूविंग ऑन, जेके इमेजेस के साथ साथ वीडियोग्राफी के लिए पीपी प्रोडक्शन, अभी तो वीडियोस हमारे रिलीज नहीं हुआ है, पर हमारी शादी के समय हमारी जो वेडिंग वीडियोस आप देख रहे थे, और इनका काम हमें भी काफ़ी सालों से हम इन्हें जानते हैं, तो कल जो भी वीडियोस हुआ, जो भी आप वीडियोस बाद में देखेंगे, डन बाय नन अदर देन पीपी प्रोडक्शन। प्रतीक जी, वी आर लिसनिंग, आपको, रितु को, मीत को और छोटे से वियान को, और हेरल एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अद्विक, आप सभी को थैंक यू सो मच।
1: कौन है नेक्स्ट?
0: सोशल मीडिया पार्टनर पे जाने के बाद लेट मी नो फॉर द नेक्स्ट वन, वी गेट सम अमेजिंग एक्टर्स हियर इन ऑकलैंड। ओके, हाँ हाँ, वी कांट अफोर्ड हिम ब्रो। जी चलते हैं सोशल मीडिया पार्टनर्स आईएससीसी इंडियन,
1: इंडियन सोशल कल्चरल क्लब को किस तरह हम थैंक यू कहें। आईएससीसी इज द वन दैट मैनेज द टिकटिंग यस्टरडे, एंड इट वाज सच अ स्मूथ टिकटिंग एज वेल एज द सीटिंग, सो थैंक यू सो मच आईएससीसी पहले से हमारे साथ काम करने के लिए एज अ फैमिली, लाइक आईएससीसी इज आवर फैमिली नाउ। सो मोंटी जी एंड साची भैया, यू वर एट द डोर्स विद द टिकटिंग एंड द वे यू डिड इट, वो इतना स्मूथ फ्लो था, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अंशु जी, द वे यू डिड द सीटिंग एंड मेड श्योर दैट एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड एंड देर वॉज नो गैप्स लेफ्ट, थैंक यू सो मच अंशु जी फॉर डूइंग दैट। एंड इंडियन सोशल कल्चरल क्लब का भी दिवाली आ रहा है ऑन 25th ऑफ अक्टूबर, सो मार्क द डेट एंड वी विल सी यू गाइज फॉर आईएससीसी दिवाली।
0: यस, Q2 से हो रहा है और इसके लिए भी एक्साइटमेंट, वेल यू विल सी बहुत ही जल्द, क्योंकि रेडियो केजे इज वन ऑफ द मीडिया पार्टनर्स, बहुत ही जल्द हमारे पेजेस पे ये देखने लगेंगे। Talking about media partners, जहाँ से हमारा ये शो हो रहा है, पर इसके साथ साथ जो जो लोग वहाँ पर थे, आप लोगों ने काफ़ी लोग जो रिकॉर्डिंग है और साउंड मिक्सिंग है, इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट दिया था, इट वॉज डन बाय नन अदर देन
1: Plains Media,
0: right over here, Charlie.
1: Plains Media. Yeah, and you were very right, क्योंकि काफी लोगों ने recording का और audio का compliment दिया है, and one of the youngsters ने आकर कहा कि initially I thought के जो recording है, जो audio है, it's AI generated, and only after some time is when she realized कि actually ये Krish और Jibby का voice है. So thank you so much, इतना सारा compliments मिला है on the audio recording, but it is our voice, but definitely the efforts and the help and the support was provided by Plains Media. And ye bhi janna zaruri hai ke it's not an Indian guy who did it. He did not know Ramayan, he did not
0: Charlie,
1: know anything about
0: Nico,
1: Ramayan. Yeah,
0: everyone actually did hamare mixing, Charlie, Nico, yeah, Plains Media se Priya,
1: yeah,
0: most of them hindi is not their first
1: language. No language at all, yeah, hindi is not their language as
0: yeah.
1: such,
0: so they don't know that, but well done. Or Lorraine Julie Mani ji.

0: Namaskaram, we missed you.
1: Yeah,
0: but thank you so much, and thank you so much for supporting this event. It went really, really well. Thank you.
1: Yeah, Lorinji ka message hai, well done to a great show. I saw some clips and pictures. Thank you so much, Lorinji, and thank you so much for supporting. Please pass this to Ashwinji as well.
0: Nishi, were you there? Did I see Nishi? I don't know.
1: I think Nishi ji ke tickets Anurag ji aur Chetna ji aaye the us pe, but Nishi ji keh rahe, huge congratulations on the success of Ramayan Krishan Jibi. Your hard work and dedication have truly paid off. So happy for you both. Wishing you lots more success ahead. Well done. Keep it up. Thank you so much, Nishi ji. We missed you there, and hope you and Mr. Nishi would have come there. That would have been, Mr. Nish would have come there. That would be great. Kaun hai Nishi?
0: Shakun Sharma ji, bhaiya hamare saath hai. Silky Thompson ji, haan, kal agar वहां पर आए थे, प्यारा सा जो डेकोरेशन बड़े से रामायण का आपको एंट्री में ही दिखा, इट वाज डन नाना दादिन
1: सिल्की जी फ्रॉम फैनफेयर इवेंट्स, एंड नॉट ओनली द डेकोरेशन, फैनफेयर इवेंट्स ने हमें हमारे प्रॉप्स के साथ भी बहुत सपोर्ट किया है।
0: के बारे में बोल रहा था, जो बड़े से काउच में कुंभकर्ण सोया हुआ था ना,
1: अभी किसी ने लिखा था कि कुंभकर्ण का कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगा, सो जो काउच में कुंभकर्ण लेटे हुए थे, दैट वॉज प्रोवाइडेड बाई फैनफेयर इवेंट्स। साथ ही साथ जो धनुष टूटा था, उसका जो टेबल था, उसका जो डेकोरेशन था, दैट वॉज डन बाई फैनफेयर इवेंट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इवेंट प्लानर और इवेंट डेकोरेटर, डू कॉन्टेक्ट फैनफेयर इवेंट्स।
0: जी हाँ, क्राइस्टचर्च में शायद ही ऐसा कोई इवेंट होगा जहाँ पर फैनफेयर नहीं होता है। थैंक यू सिल्की, थैंक यू द एंटायर टीम फॉर सपोर्टिंग अस। और एंथनी ब्रो, वी मिस्ड यू, आई डिडंट सी यू, बट थैंक यू। रोहित पटेल जी हमारे साथ है, थैंक यू। और अरे, हमारे साथ सेलिब्रिटी दिशा पटेल भी आ गए।
1: दिशा जी भी है, कहाँ है? हमें तो नहीं नजर आ
0: रही। नॉट दिशा, ओके
1: सॉरी, सेलिब्रिटी
0: सही तक,
1: द एमसी, द आरजे
0: सिंगर,
1: नो क्राफ्ट नो क्राफ्ट। दिशा जी हमें रामायण के लिए बैकग्राउंड में हेल्प कर रही थी, और एक दिन हमने उनसे मदद, एक्चुअली रामायण के डे पे,
0: दिशा चीक चीक के लोगों को इसके में बता दो,
1: देखो ये जीविका स्वभाव हो रहा है। रामायण के डे पे सुबह को दिशा जी हमें हेल्प करने आई थी। थैंक यू सो मच दिशा जी, बहुत प्यारा हेल्प था। बट दिशा, you and Nitish, the stage opening was amazing. If anyone was there during the stage opening, do give a shout out to
0: Silky,
1: Disha.
0: Silky was there.
1: Yeah, do give a shout out to Disha and Nitish, because they did an amazing job with creating the vibe and starting on time. So well done Disha, RJ Disha kehna chahiye, well done RJ Disha, and we are looking forward for our future projects.
0: Aur usse dekho, khatron ki khiladi Rohit Patel usi ghar mein wahin se baith kar has raha hai bhai, himmat hona chahiye bhai, jigar nahi, jigra hai aapke paas.
1: Yeah Tanu ji, jo aap big fan ho Kumbhkaran ki, unko Kumbhkaran ko agar letana tha, ek proper couch chahiye tha, aur wo fanfare events ka couch tha,
0: pyara sa, khoobsurat sa. Aur yahan tak ki hamara jo Ramayan jo Fiji se aaye hain, aur like लगभग 100 साल पुराना है रामायण जहाँ पे था, वो भी फैनफेयर की तरफ से था। चलिए एक गीत में चलते हैं, ताकि वी कैन ऑल्सो टेक अप हेडफोन्स एंड टॉक टू द पीपल हमारे साथ जो फेसबुक लाइव में, पर जितने लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पे, लीजिए आप सभी के लिए धुरंधर द रिवेंज का ये गीत, जान से गुजरे थे। आई विल टेल यू अ स्टोरी कि इस गीत को हम यहाँ पे क्यों बजा रहे। तब तक के लिए, यू आर लिसनिंग टू रेडियो केजलोकल
1: ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to us on Plains Media 96.9 और अब हम Facebook पर भी live आ चुके हैं.
1: जी हाँ बिल्कुल. और एक बार फिर अगर शायद आप हमारे साथ अभी भी शामिल हुए हैं, हमारे साथ कल जो रामायण के शो के बाद द ओवरवेलमिंग हमें जो कंग्रेचुलेशन मैसेजेस रिस्पॉन्सेस, जो या तो ये रिस्पॉन्स चाहे एक कॉल के फॉर्म में आया है या मैसेज के फॉर्म में या पर्सनली आप लोगों ने किया है, बहुत लाइक आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स गोना बी वन ऑफ आवर फेवरेट मोमेंट्स यू नो एवर.
0: Ramayan has been one of, I should say, it kind of marks in our diary as one of our favorite and memorable thing that we did. The journey itself has been like really, I mean, it's for anyone who wants to do a production, for anyone who wants to do MCing and RJing, we do want to say that it's a rewarding job. It's amazing. Lekin isme kafi effort lagta hai, kafi mehnat lagta hai, and we wish you all the best. And I think everybody should try what they feel their talent is.
1: Singh sir, you are with us. We are right now from Christchurch. ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. आई होप यू आप हमारा जो शो ही इन्जॉय कर रहे हैं. यस तो गाइस कल हम जो रामायण के जो शो है हम वी आर नॉट गोना गो लाइक यू नो नॉट गोना गेट टू कैरीड अवे विथ इट, क्योंकि हमें पता है कि मेहनत हम लोगों ने तो बैकग्राउंड में किया था, पर जो स्टेज पे आके जिन लोगों ने किया दे शुड बी गिवन द मेन क्रेडिट.
0: या एवरीबॉडी किससे शुरू करे, हमारे डांस क्रू, माय लेडीज, यू गर्ल्स वर्कड सो हार्ड. क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारी लेडीज है जो 9 months से प्रैक्टिस कर रही है, देन वी गॉट एक्टर्स ओनली आफ्टर जुलाई एज सच. सो 9 months से प्रैक्टिस करना, आई थिंक एक स्टेज ऐसा भी आ गया था बस सो गया यार, कितना लंबा चल रहा है ये प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग एंड थकान एंड ऑल. और आज सुबह हमें कितने लोगों का कॉल आया और मैसेजेस आया, क्योंकि संडे यूजुअली 10:30 को ट्रेनिंग होता है, एंड देन दे आर लाइक ओ आज इतना सूना सूना लग रहा है बिना ट्रेनिंग के एंड बिना कुछ, एंड हमें भी सूना सूना लग रहा है, पर आज हमारे बॉडीज काफी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड है. बट मे बी वेंसडे वो हमें हिट होगा कि यार सब खत्म हो गया.
1: Yeah, the girls did look very beautiful. Yashmin ji, thank you. Aap bhi aaye hamare saath on behalf of MC Kia. Aap aur Rita ji, you were there. Thank you. Bahut hi acha laga aap logo se milkar. Aur well, aapke chehre par aur Rita ji ke chehre par wo muskaan aur wo jo happiness hame dikhaye, so uske liye dil se shukriya.
0: Yashmin ji, I know ke aapne humse tickets mange the, so I'm very actually happy ke jo Lauren ji ne aapko tickets diya, I was very happy to see you there, kyunki I know how many times you asked for tickets, so thank you so much. Ek kaam karna, next production mein pehle hi ticket le lena.
1: Ji haan, aur okay, hamare paas at least another 15 minutes baki hai, 10 minutes actually. Chale next production के बारे में हम बात करते हैं, जिसका डेट तो अभी हमने वेल वी इवन नो डोंट नो कब है, पर जब भी आई थिंक एक अलग जब, क्योंकि आप जो जो लोग धर्म में यू नो फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि राम जी त्रेता युग में पहले आते हैं और राम जी के बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण श्याम जी आए थे. तो जब भी What are we doing next?
0: And क्योंकि राम जी पहले आए थे और कान्हा जी बाद में आए थे, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कान्हा माखन से महाभारत तक. और हम चाहते हैं कि आप सब वो आके एक्सपीरियंस करो. वंस अगेन हमारे क्रू मेंबर्स जितने भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन करेंगे, एंड देन वी विल बी वर्किंग रियली रियली हार्ड टू ब्रिंग दिस प्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ यू. एंड अब हमें और मेहनत लगेगी, क्योंकि आई थिंक आप सबका एक्सपेक्टेशंस भी अभी लाइक काफ़ी हाई हो गया होगा हमसे, विच मीन्स कि हम लोगों से अब डबल मेहनत लगेगी, हमारे क्रू से अभी डबल मेहनत लगेगी. बट हम कोशिश करेंगे कि हम जस्टिस दे. एंड जब कान्हा के बारे में बात करें, आई एम सुपर एक्साइटेड क्रिश जी, क्योंकि कान्हा के जो स्टोरीज हैं, जैसे
1: मुझे लगा आप बोलेंगे कि मेरे पास

0: दे कृष्णा है,
1: वो भी है हमारे पास खुद एक काना है जो नटखट है, जो नॉटी है, जो गोपियों के पीछे जाते हैं हमेशा, एंड माय डांस क्रू नोज कि ये कितने गोपियों के फैन है. सो कान्हा जी की कहानी लेके आने में, और वो एक अलग अंदाज होगा, रामायण वॉज डिफरेंट एंड कान्हा जी की कहानी अलग होगी, तो हम चाहते हैं कि आप वो विटनेस करो, आप आओ एंड हमें सपोर्ट करो. हम सून एक पोस्ट डालने वाले हैं उसके बारे में, बट वी आर होपिंग दैट आर community supports us again.
0: Dipu, bro, you are also with us, another amazing singer from Christchurch. Dipu, thank you. और इसके साथ साथ सरोजनी, नमस्कार, हम कैसे हैं? You'll be Krishna, भाई आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है, और जो जो लोग कृष्णा को देखे हैं कि कृष्णा इस रंग का होता है, गोरा कृष्णा नहीं होता है भाई. तो अगर हो सके अगले 2-3 साल में अगर आप ये रंग का हो जाओ, आपको कृष्णा बना देंगे, उसमें क्या है.
1: सो हाँ, हम लेकर आएंगे कान्हा माखन से लेकर महाभारत तक, एंड वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड. एक्चुअली ये लास्ट वीक ही हमने पूरी तरह कंफर्म किया कि हाँ, लेट्स डू अनदर वन.
0: थ्रू मिडवे जब हमारा ये जेनी रामायण के साथ शुरू हुआ था, आई थिंक 3 months अगो, वी काइंड हम सोच रहे थे इसके बारे में, क्योंकि बट देन ओवर द टाइम जो जो हमारे साथ हो रहा था, इन टाइम्स हो रहा था, इन सेंस कि आपको पता है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है वो आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टीज, lots of obstacles.
1: And we should also let you guys know कि इसमें काफी funds जो है वो हमारे खुद के हाथ से गया है.
0: किडनी बेचने का समय आ गया मेरा.
1: I think किडनी बेचने का बैंक खाली हो गया है, but we are not unhappy about it or we are not dissatisfied about it because we feel that it was a blessing yesterday. जो feeling था ना, जो वाइब था उस वेन्यू में, जो आप लोग क्रिएट कर रहे थे, उसमें पैसे भी गवा दिए हमें, लाइक उतना फर्क नहीं पड़ता. सो बट ऑल्सो वी हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन लाइक दिस इज नॉट ऑलवेज अ स्मूथ जर्नी. सो हमारे लॉट ऑफ लर्निंग्स है इस प्रोडक्शन से, जो हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्शन में लेकर आएंगे. बट येस, वी वुड लव योर सपोर्ट विद कान्हा एज वेल.
0: थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच ब्रो. और यस प्रतीक, आई एग्री विथ यू. हमने तो इतने बार ओवाइन ओवाइन ओवाइन अगेन हमने ये देखा था, हमारी नज़र नहीं हट रही थी. तो जो जो लोग पहली बार देख रहे थे, हम सोच ही रहे होंगे कि आपके लिए कितना होगा.
1: यू नो प्रतीक जी, एक टाइम ऐसा हुआ था कि हमको तो दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे, पर एक टाइम ऐसा हुआ था जब क्रिश जी और हम ऊपर गए थे हमारे वानर सेना को नीचे भेजने के लिए, एंड उस टाइम पे पहली बार हमने ऑडियंस को और स्टेज को देखा, लाइक फर्स्ट हमारा विच वॉज इन इंटरवल, ऑडियंस और स्टेज को देखा, एंड यू गाइज आर एक्टर्स एंड डांसर्स. वो हनुमान एंट्री में जो फील आया था जब आप लोग एंटर हो रहे थे,
0: अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं. परमिंदर तूर जी, आप भी कल वहां थे. नोवेल्टी को, आपको, रूबी भाई को धन्यवाद. वन ऑफ द प्रैक्टिस आपने हमें मीठा, हमारा मुंह मीठा करके पहले से ही शुभ आगमन का शुरुआत कर दिया. तो परमिंदर जी, अगर आप सुन रहे हैं, और रूबी जी, आपको भी दिल से शुक्रिया. रितु ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है, जो जो लोग देख रहे हैं आप प्लीज बताइए, दिलीश जितने लोग हैं, इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? रितु ने जो सजेशन दिया,
1: कृष्णा आप कान्हा एंड मैं राधा. मैं राधा. मैं राधा. But actually that would be a perfect combo, क्योंकि कन्हैया हमेशा से सावले रंग के थे. कन्हैया हमेशा सावले रंग के थे, और हमारा होप है हम भी एक कन्हैया सावले रंग का ही लेकर आए आपके साथ.
0: If you see all our characters, राम जी के चेहरे पे क्या होता था?
1: कामनेस.
0: हमारे कैरेक्टर के चेहरे पे वो कामनेस था.
1: जी,
0: सीता माता was like very what's the word?
1: Fragile and little and
0: एंड
1: रावण, हमारे रावण को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि लुक्स लाइक ऑडियंस रावण से काफी इम्प्रेस थी. हमारे रावण को हिंदी बिल्कुल, लाइक ही इज मलयाली, हिंदी आता है बात करना, बट रावण ने जो काम किया, फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज एज एन एक्टर रावण ने एंट्री किया था. उन्होंने पहले कभी एक्टिंग नहीं किया. वैसे 80% ऑफ द क्रू वॉज न्यू परफॉर्मर्स, वेरी वेरी फर्स्ट टाइमर्स ऑन द स्टेज, वेरी वेरी वेरी फ्रेश परफॉर्मर्स. सो शमनाथ, सुपर सुपर प्राउड of you. And each and every character, chote se lekar bade tak, aap logon ne kya kamal kiya hai.
0: Ji haan, bilkul. Aur, aray, humare Hanuman ji bhi aa gaye. Krish bhai, Krishna aur Aiken bhi Balram. Dekho, characters mil rahe hai saare. Aaj humari Radha ban jana ji bhi ji. Chalo, aap aa humari Radha ban jana. Ji haan, tab to aapko, agar ji bhi ji Radha banegi, to aapko Krishna banna padega, Pratik ji. Aur, Disha ji keh rahe, Ravan was epic. He was. Another thing.

0: जैसे हमारे सारे कैरेक्टर्स, आपने देखा होगा कि हमारे जो कुंभकर्ण थे आखिरी में केले खाते, यू नो, खाने का शौकीन थे।
1: ओह माय गॉड, दैट वाज द फन पार्ट, आर कुंभकर्ण, व्हाट ही डिड एट द लास्ट कमिंग, केला खा के आ रहे थे, एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, एंड एवरीवन, आई लव द वे द स्टेज क्रू केम, द गर्ल्स केम, वानर सेना केम, रावण का, सॉरी एक्साइटमेंट आ रहा है, रावण के बच्चे जिस तरह है,
0: एक्साइटमेंट होते होते हमारा एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का शो जो है ऑलमोस्ट डन, बट डोंट गो, वी विल बी टॉकिंग टू यू गाइस फॉर अनदर quite some time. Chale, jitne log hamare saath frequency pe jude hain, thank you so much. Sorry you guys will miss out, kyunki hamare Facebook live pe hum inse baat karte hi rahenge, but don't go anywhere, we will be seeing you in few days, that is on Friday 6 baje, same place, same time. Tab tak ke liye apna khayal rakhiye, this is your host RJ Krish signing off with a very beautiful, with a very gorgeous
1: RJ Jibby, bye.